मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये उदरे जिसके दाएं। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकिया होया सी ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सैं जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी। उस वेले तू अरदास करदा सैं हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़ मैं तेरा सिवरन करांगा तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा सत संगत बह के हर नाम दिया सा तू भूल गया वह दे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफुल पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

बोंदे मोह खास जे असी कलयुगी जीव मोह माया दे जाल विच फसे होए हां ते वाहिगुरु जिहड़ा तू सानू प्रेम लाया अपने चरणा दा सिमरन बख्शिया उस सिमरन दे सदके असी तैनू भी तो बनिया होया क्योंकि नाम ने किदा उधार नहीं किया। आकाश मंडल दे तारियां दी गिनती तो साइंसदाना ने कर ली है पर जितने नाम ने तारे हैं उन्हां दी कोई गिनती नहीं कर सकता। करोड़ों दा उधार हो चुका है हो रहा है ते रहिंदी दुनिया तक नाम जपन वालियां दा उधार होंदा रहेगा। इसलिए हे भगवान हम छूटे तुम आरा

ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਕਛ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਸਗਲ

सत्संगी सज्जन गुरु के प्यार वाले जितने भी माई पाई साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पवित्र कदमों की हाजिरी भर रहे हो

सोचा में डुबे हो आखन लगे नहीं बेटा साध ना दिस है जग विच कोआ कोई संत नहीं कोई महापुरुष नहीं सब पखंडी हैं सब डंबी हैं कोई महापुरुष नहीं रहा। ते गुरु गोविंद सिंह पातशाह 9 साल की अवस्था च आखन गए बापू जे मैनू हुक्म करो तो मैं दसा आखणगे बेटा तेरी निगाह च है कोई आखणगे महाराज मैं ऐसा संत दसांगा मैं ऐसा महापुरुष दसांगा मैं ऐसी व्यक्ति दसांगा मैं ऐसी जोत दसांगा जिदे एक एक खून दे तुपके तो धर्म पैदा होएगा जिदे एक एक खून दे कतरे तो धर्म उत्पन्न होएगा धर्म की राखी होएगी। आखणगे ओ कौन आखणगे महाराज आप तो वड्डा संत होर कोई नहीं है पिता जी आप तो वड्डा होर कोई महापुरुष नहीं होर कोई तपस्वी नहीं। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह आखण गए बेटा एक ही तू कह रहे हैं आखण का मारे मैं ठीक कह रहे हैं बापू जी तुसी इस धर्म की खातर हिंदू धर्म की खातर अपनी कुर्बानी दे दियो बलिदान हो जाओ भेट हो जाओ कुर्बानी दे दियो आखण गए तू यतीम हो जाएगा। ते गुरु गोविंद सिंह पातशाह कहंदे ने होते उधर जब मात के तब राखा ता जोए अब तो पए हैं 9 साल के क्यों ना सहाई होए हुण ते मैं 9 साल दा वां उसने मां के पेट जिन्हें राखी की है हूं भी राखी करेगा वह प्रतिपालना करता है जिन्हें की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनीमन कर है पच पशु नगनाग नाराद सर्व समय सबको प्रतिपाल है पोकत है जल में थल में पल में कल के नहीं पर कर्म विचार है दीन दयाल दया निध धोखन देखत है पर देत ना हारे एक बोलो सतना। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह ने पंडतों नूं कहता पंडतो जाओ औरंगजेब नूं कह दियो अगर साडा गुरु अगर साडा मुर्शद कुर्बान हो जाएगा भेट हो जाएगा कुर्बानी दे देगा ते तुहाडा धर्म बच जाएगा। इसे तरह ही उन्हां पंडतों ने जाके कहा सानू ना खत्म करो हिंदू धर्म उत्ते जुल्म ना करो साडे गुरु मुर्शद नूं मुसलमान कर लो साडे मुर्शद नूं अगर तुसी कुर्बान कर सकते हो अगर वह कौम च आ जाए तुहाडी विच तां बच सकदे एक बार बोलो सतनाम। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अपना खून क्यों डोलिया अपना खून इस करके डोलिया कि हिंदू धर्म की खातर इस जनेऊ की खातर इस तिलक की खातर। ते गुरु गोविंद सिंह पातशाह दा ओ खालसा ओ हुण भी राखी करदा पिया अज जिन्हें जंग होए न अज जिन्हें युद्ध होए न पाकिस्तान दे खालसे ने अगे होके लड़ाइया लड़िया खालसा हर मैदान जंग च अगे है और हुण भी खालसा अगे ही चलता आ रहा है। ए बहु बेटी दी राखी लई है ए जुलम दी राखी लई है ए मजलूम दी राखी लई है खालसा बनाया ही इसे करके है कि धर्म दी राखी वास्ते एक बार बोलो सतनाम। समा नहीं एदे ते विस्तार किया जाए जो शब्द पढ़ रहे सां गुरु गुरु जप मीत हमारे।

करे हरि धन्यवाद।

be specific. We can't guarantee how they ensure it. आओ तेरा क्या भी सामना वाली है क्या हो रहा है और तो साढ़े वास्ते पकवान नानक सिर्फी ने दिया आओ बैठ सुन सकते निकला महाराज सुल्तान बादशाह से भी अजूर से नगे मना ले हो रहा के नींद के बादशाह ही दे क्या मत है हाथियों के चैन लगा तो जुबान मेरे सतगुरु तेरे को पूछने वास्ते चिंता नहीं करना पर कारपुटी मार देखनी होगी जी आप आ जाते हो घर वापस जाऊंगा तेरे फिर मेरे दर्शन हम कह लगे ऐसा बकरिया लेके घर आया कुरड़ी मार बिल्कुल बीच नहीं थी काका जी मार उस तो आज देरी लाके आए आपके कहने लगा मां ये साज कुछ नहीं है ना तो आज तो आने वास्ते जीती थी मेरे खेलदार है मेरी मां अब तो मैं वो दादा मिले जिसे दर्शन जीतना मेरे सामने को कभी हो सकती है माई मेरे

है कि उनको दस्तार कितना है,

يملك فضلا.

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उपदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखते ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान दे भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे उमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिमें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सादर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वटे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਤਲਾਂਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ, ਕਾਸ਼ਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਾਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਮ ਫਾਇਲ। ਤੇ ਸਰਾਰ ਸਿਰ ਵਾਹਦ, ਸਰਾਰ ਜਮਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ, ਇਕ ਬਚਨ ਬਹੁ ਬਚਨ। ਸਰਾਰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ, ਭਗਵਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮਹਾਤਮਾ, ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਏ, ਏਡਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਏ। ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕਤ ਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਰੋਖ ਮੀਨਸ ਰੁਖੀਆਂ, ਰੂਹਾਨ ਜਮਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਏ, ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਚਕਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਪਰ ਇਕ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਈ, ਅਕੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤਕਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਕੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਏ, ਹੋਮੇ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਕੜਦਾ ਨੀ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਕੜਦਾ ਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਏ, ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਇਕ ਛਿੰਨ, ਇਕ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੁੱਪ, ਮੱਟੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜੋ ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੁਨਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਸਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੂਰੋ ਮਲਾਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਏ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੁਖਦੰਤ ਰਸਨ ਕੱਸ ਜਾਏ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਹਾਜਤਾਂ ਰਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂ? ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਤਾ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੁੱਟ ਨੇ।
मुह दूजी नाही ठौर जिस तय हम जाव। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखन चाहता है मालिक मकान या मालिक दुकान कहता है मुआफ करो बाबा मुआफ करो बाबा, वो अगे टुर जाता है। सारे बाजार च गया मुआफ करो बाबा मुआफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू। उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है? जदों मैं दुआ कीती, जदों इल्तजा कीती, जदों खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा मुआफ कर बाबा मुआफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घर दे अग्यों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया घर मुक गया, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखना ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उत्थे खलोता, तेनू कहा सी जा अगे, फिर कम लग गए तू फिर इत्थे खलोता है, गया क्यों ने? ओ पक्का मंगता है ते निश्चय वाले, आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है ते इत्थे अगे आ जा, तुसी तां कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं तां हुण तेरा दर मान लिया है, तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू यह निश्चय हो गया है मुहे दूजी ना ही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगता, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगता, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना, जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगता उदो तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या है, ढीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आदीठ धर्म आदीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहिगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता, आदीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करण कारण समर्थ हो कर दई है, आदीठ धर्म अत ढीठ करम। जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मौत के दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत ढीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए, आपा समर्पण ना कर देवे, उदो तक कई बारी इनू शकां शकूकां दा शुभात दा ही शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपने तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चा धार लिया मोहे

मित्र सिखाई। खालसा मात पिता सुखदाही, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो मित्र सिखाई। खालसा मात पिता सुखदाई, खालसा मेरी शोभाशीला। खालसा बंद सखा सद डीला, खालसा मेरी जात अरपत। खालसा मेरी जात अरपत, खालसा सो माँ को उत्पत्त।

ही शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी एक छिन पर भी इहदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौंख आके कहना या मैं

मनुख नू समय दी कदर करन वास्ते प्रेरणा की थी। सतगुरु कहंदे ने सारियां जूना दा सरताज बना के मैं तैनू संसार विच भेजे। आम बात है कि जेड़ा वड्डा होवे ओदी जिम्मेवारी भी वड्डी हुंदी, वड्डे दी जिम्मेवारी भी वड्डी। साहब कहंदे ने इस धरती में तेरी सिकदारी, वड्डे वड्डे शींब गेले नथां पाई फिरदा इंसान, बड़े बड़े जरीले नाग पटारियां विच बंद करी फिरदा। सतगुरु कहंदे ने पर तेरा कोई फर्ज भी है, तैनू नाम जपण वास्ते भेजिया संसार विच। गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, ए समा है तेरे नाम जपण दा। तां बाबा फरीद ने चेतावनी दित्ती है, भाई जदों दरिया विच थोड़ा थोड़ा पानी होवे उदू तां बेड़ा तैयार कर लै ताकि समय नाल तू पार लंघ सके, ते जदों दरिया विच तुग्यानी आ गई तूफान आ गया दरिया ठाठा मारदा होवेगा उस वेले मित्रा पार नहीं लग्या जाना, फिर तां डुबण दी गल ही है। इस करके कृपा कर, नाम जप, नाम दा बेड़ा तैयार कर ताकि समय नाल तू भव सागर तर सके। गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी विच बाबा फरीद जी प्रेरणा दे रहे ने ते सानू चेतावनी कर रहे ने, भाई समय दी

0: सो अंत
1: सो वह अनंत
0: कटकट
1: व्याप रहा भगवंत
0: तन
1: मह आकाश प्यार
0: सर्वलोक।

ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੇ ਗਵਾਈਏ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

बिना पद पाया था तुम एक संत आया, इना जनता के वास्ते इतना ही बेटी जग पाया। इकरा नु तू मेला का पद पाया, गुरु कृपा ते जानिया जिस सदा बहाया, चाहे देसा समाया सतनाम सिंह।

मरण काल में वो तनुगुरु नाम से पार करा रेन नदी में चुप्पी मार के खट खंड हर खंड मान लो शायद आज हजूर फिर चले गए सुल्तानपुर के अंदर सारे शहर के अंदर के पहुंच गए ये नारद वेण नदी युद्ध देवी नानकी भी कई ने जाती किया जैसे तेरा वीर वेण नदी तो बाहर नहीं निकली और देवी ने जल्दी कि मेरा वीर कदे नहीं डूबता वो तो डूबिया उतारना पशु परेश मुगत को उतारे पाहन पास उतारे हजू सचखंड बन सचखंड वे नरम अगे नूर ही नूर जानना ही जानना उस जोर के अंदर जाके हजूर लीन हो गए जो जर में जर आए खसाना क्या ज्योति सन जो कुछ समय के बाद उस जोड़े जो सोना कांता है सदगुरु सामने सन्मुख बैठे आवाज आई नान जी तो मात लोग कल की जीवन उद्धार करने वास्ते वापस क्यों आ गए सदगुरु ने किया मेरे दादा जी पहले तो सचखंड के द्वारे से दरवाजे से अनेक ही राम अनेक ही कृष्ण अनेक ही मोहम्मद ईसा मूसा गोरख खड़ोते सहबाने से सब कुछ आ गया जित दर लख मुहम्मदान ब्रह्मा कृष्ण पर महाराज तुम्हें इन्होंने अपने नीत क्यों नहीं आवाज करे जाने मैं दुनिया से भेजे जाके मेरा नाम जपाओ पर इन्होंने मेरा नाम जपान भी बजाय अपना नाम इन्होंने अपना नाम जपाए अपना साथी अपनी जनानियों का नाम भी मैंने इस वास्ते मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हैं मेरे लिए नींद नहीं हो गई साहबान ने हथ की वाहेगुरु फिर करो कृपा असि मातरों में जाके की दुनिया में तो उस अकाल पुरख ने हुक्म किया कि नानक जी ए नाम जान के दुनिया में छुपाओ खेड़ा ए नमकारी नाम महामस्त

ऐसों के संदर्भ के पाठ्याय जी समाधि आवाज अभिनाश जी की कर रहे हो तो हजूर

विष्णु महामंत्र देवी देवी का मंत्र नहीं, ये अकाल पुरुष का अपना मंत्र है। सारे श्रोमणी सारे मंत्रों को सब को जिथे महामंत्र मूल मंत्र का होता है उसे चीज की कार नहीं होती। मानो जिसे नरकार का मंत्र जितने चले उसके वायु दुनिया वक्त सदा भरपूर रहती है। सब तो वाला जिसने इस मंत्र का जाप किया उन्हें किसी मंत्र की लौड़ नहीं, किसी मंत्र सब तो श्रोमणी मूल मंत्र पहली लौड़ सदगुरु से पाया इस महामंत्र की प्राप्ति करते वही नदी की जो अजबाहर हमारा किसी गए हजू कह लगे बताया सचखंड दोहन श्रेण का आप स्वामी खेले अंदर मरदाने ने हाथ जोड़ के किया हमारा जिसके जाने तो मरदाने को नार ये सज्जन ठाकुर गए तो तभी मरदाना नार अज अपने वाहगुरु ने देश गए वो तो मरदाने इतने क्यों छे मरदाने इसका एक कारण कि तेनों वाहगुरु ने कीर्तन की कला बखी कीर्तन की दात बखी तेनों नाल लै जाते तो उसे जाके कीर्तन करना मरदाने जिस कीर्तन ने दुनिया का भला करना है वो कीर्तन मेरे वाहगुरु भी बड़ा चिखा फिर मरदाने तो कीर्तन करना सी हुक्म हो जाता मरदाने इतने छड़ जा असि हुक्म बोलना नहीं सी तेरे कीर्तन भी मरदाने अजे मात लोग बड़ी हो इस वास्ते तेन नाल ही पहली पौड़ महामंत्र की प्राप्ति करके फिर मेरे धन गुरु नानक दाता जी ने इतनी कमाई की कोई ऊंचा इसकी आप नारायण कलाधार जग में पर निर्गुण तो सरगुण बन के दुनिया को तारण वास्ते आए कम ही नहीं थी पर बाबा जी वचन कर रहे सर इस वास्ते सतगुरु जी ने कमाई की थी क्योंकि दुनिया को उपदेश देना थी कि भाई कमाई करोगे तो गली बातें कदे रही अजकल भी तो कह रही दुनिया क्यों नहीं कि करना कुछ ना पे एवं रहते तीनों जे रैपर भी बड़े पैदा हो रहा है इस सारी स्थिति के मालिक वर्ग करना यह भी बड़ा ज्ञान न कभी होती सपना सरला सार कर्म ले तो पाइए हो हिकमत साहबा ने कमाई की भाई साहब भाई साहब जी लिखते हैं कई नाम बापे पाया बख्श दी बख्श के वास्ते ऐसी शायद सिंह साढ़े वास्ते बापू का सारा खजाना पुत्रों वास्ते फिर नैत पुत्र संभालने से नलैत नहीं खजाना सारा बापू का बच्चिया वास्ते अपने बापू वाहेगुरु तो अकाल पुरख साहबा ने जो दात लिया भाई साहब जी ने

करते आए हैं, एक दिन चले तुर जाए एकांत रह के अपने सारी चीज मूल मंत्र का जाप करे। संत बड़ा महम बड़ी शक्ति है ये दंगारी मंत्र, जितना जप लाओ एदा बड़ा लाभ, तुरदिया फिरदिया उठदिया बहदिया हर ना और नाम वाहिगुरु जी का ये जपांगे सतगुरु दिया मेहरा फिर सानू की मिलेगा साडा जीवन सफला फिर साडा एक लोक दुखी पर लोक नाम करते मेले अखीरला जन आपका जीवार मिलकर लगाइए उस उपरंत कीर्तन मात्री और

ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੇ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ

अमृत जल धारा पूर्ण सागरा सर्व मनोरथ पूरे जय जय कान भरो जयंत लाभे सकल पूरे पूर्ण बुद्धि।

कौडी बदले त्यागे रतन छोड़ जाहे वाहू का जतन सो संचो जो हो छी बात माया मोया टेडो जात अभागे तै लाज नाई सुख सागर पूरन परमेसर हर नाचे त्यो मन माही अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवे न उस्तत करे निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों प्रिय।

गुरु नानक सच्चे पातशाह एक जंगल विचों विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नूं तकदे हां साहब जी मरदाने नूं पुछण लगे मरदानिया मौत नूं कितनी कु नेड़े समझदा है। मरदाने ने आख्या गरीब नवाज सच्चे पातशाह असी अलपग जीव हां आप सरबत

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आन वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू ही मौत नू दूर समझदा, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े ओ मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

बहु पर पंच कर पर धन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पैरी। एदे अमोलक श्वास जो वाहेगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़िया, बड़िया मेहनता कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ। आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ श्वास उस दे बदले दे दियो। तां जमदूता ने कहा ए श्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होन लगे। तां कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू 1 श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई। जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल।

नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया भाई पही प्राप्त मानख दे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनू अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे हैं पले पुरशां पासों कोई चंगी गल सुन पले बन ते जे आप बोलना चाहुंदा है तो परमेश्वर दी भगती कर ओदा कीर्तन कर ओदा जस कर ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जावेगा इस लिए जब लग दुनिया रहिए नानक किस सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए मिथत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत जिना नू ए चंगे गुण प्राप्त हन भई उना दा संसार ते आउना सफल सफल हो जावेगा गुरु नानक सच्चे पातशाह।